0: महिना हो भदौको, अनि साथ इमेज एफएम 97.9 को।
1: वेस्ट डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा। आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा। आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा।

थकी जोजोला पाना पलसको स्याञ्चना थौ या थकी ज्याजोले इमेज एफएम 97.9 नेपाल बासा ज्याजो थकी छिक्पिसा सनी बाह बनी गुताई से चिता इतक निन्दे फै थौ थकी च्याक नौदो छिक नेपासाजी सुरेन्द्र मानन्दर थौ छिक्पिन त नेप्सुङ्गु नुगु पुलाङ्गु पति मेजना वेद नगुदो आक्न छलिसका धेन यदि छिक्मिनु त्वाले संस्था गुठी खला पुच पाखे लिसे शिक्षा सुन कथा म्युजिक भिडियो पिकान दिउसा अहिले मे पिकान दिउस जिम्स स्वापो दैस जिम्स अवश्य समाचार रूपे फसे ठोकिरहेका धैज नहुदो हजुर यहाँ भाजु मेज बि आ थौ ज्याजोले जी छिक्मिन त नेप्सुङ्गु नेवा मित निङ्गुगु कुटोइन्जु नगुदो झासन टक्कै नापा छपु मिङ्गे सलिल सुन्दर तोलाधर ओ रत्न शोभा महर्जन यतस्क लोकौँ हाउटी मे साप बाँला साप बाँला अलि ठुकु मे मस्त मोडेल त जुया मिर दिगु ख तस्क निपसुङ्ग त म्युजिक भिडियो देखा तौदो ठस्क लोकौ भन्चौँदो आ ठुए मे छिक्न तैचुना सलिल सुन्दर तोलाधर ओ रत्न शोभा महर्जन यथो निपसुङ्गु सले निसा

ख्याख्न ज्याजोले लस्कु स्याङ्चुन पास्मी आछिक पिन्ट मेगु छपु मेटेट नगुदो अल गुगु मे सब्या दिगुदो पुष्पनारायण मानन्दर वेकछम पुलामपति मिहालमी ख अले वेकन यकु मे पिकान मधिकु साँतस्कन हिप्सुङ्गु मे पिकान दिगुदो अले वेकन ठोमे करिब 52 वर्ष न्ह चोइ तगुपति मेख आ वेकन नु कथरी एरेन्जियाना अल ठोमे वेकन चोइ दिगु लेचिना दिगु अल सन वेक वेक ये खस अले वेकन ठोगु मे म्युजिक भिडियो न देख दिङ दो अल छिप्स म्युजिक भिडियो सोमा छ युट्युबे सचेना सोइस मिनियन मा छ ठिठी एफएमए मिनियन दिस निने आ पुष्पनारायण मानन्दर या सले थौजी छन्त मङ्सी खना यिन्दिस निशा

직선 연전에 디고 두고 닥긴 자절레지 직빈다 녀숭고 민영가 쩌노화 알라테 배달 덕에 빌라더니 미사수에말라 먹라 미전 미사 미사 미전 수에말라 아 수야 여디어들레 배터 미사 미전 미전 미사 수에블레 지 러브줄라 저거 मतलब चाहिँ नि ठो लभ म्यारेज तर एरेन्ज म्यारेज जित्दा चाहिँ नि सुना मिलेन बि लमी नमिलेन बि अहिले लम्मी मरेकोलाई मिसा मिजा मिजा मिसा सुए फैमुखो अहिले अथे चाहिँ नि ठो मे चाहिँ सूरजवीर बजाचार जुन ए लम्मी त ता मिसासम्म मिलेन मिर्का टाइजाउँ डिगुडो अहिले ठो मे म्युजिक भिडियो बने तस्न लोको हाफी म्युजिक भिडियो खाल ध्रुव कपाली जुन ठुके ध्रुव कपाली हो रमी अहिले मेबिपी किरण जोशी मेरिना महर्जुन जुन टुके अभिनय यान्डी उख तस्क अनि एपसङ्गु मे सुरजवीर बजाचार्य सले निने ठो ए लम्मी टाटा